एफएमएडिक 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। सवेरे के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6 बजने को है, वह आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर

0: उत्पादन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
4: वंदनवार

वंदन वार से पहले चिंतन। आज का चिंतन है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन उसूल है हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान कई परेशानियों की सबसे अच्छी दवा है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 6:30 का समय हुआ है। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 210 आप सुनेंगे। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिएगा श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का भाग 5 प्रसारित होगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। ये कार्यक्रम आप पुनः शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सात बजे सुनिएगा भूले बिसरे गीत। हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस। इसका भाग 31 आज प्रसारित होगा। सुबह 8:30 पर और रात 8:15

मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात पुनः 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे हेलो फरमाइश। ग्यारह बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। 12:05 पर सजाई जाएगी यादों की महफिल। सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे। 2:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। 3 बजे सुनिएगा हेलो सहेली। पिटारा के अंतर्गत 4 बजे आपको सुनवाई जाएगी गीतों भरी कहानी। कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का है। 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर शाम को वक्त होता है कार्यक्रम संध्या रंजन का। 7:00 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गजलों से सजा गुलदस्ता। 8:00 आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी जरा सी आंख लग गई। लेखन और निर्देशन गिरिंद्र प्रसाद का है।

आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर राजुल अशोक का है। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और रात्रि 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा में। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 201।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं।

आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: रविंद्र जी, तबले के दौर की बात हो रही है तो तीन ताल की हमने पिछले कड़ियों में बात की।

0: तीन ताल के अलावा फिल्म संगीत में और कौन से ताल है जिनका उपयोग किया गया है?
1: जी, तीन ताल के अलावा शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन में जो ताल हम लोग संगत के लिए लेते हैं
0: जी,
1: उसमें भी एक है कि तीन ताल की जैसे खूबसूरती है तो वैसी ही खूबसूरती है रूपक ताल की। ये सात मात्रा का ताल है, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। तो ये रूपक ताल जो है इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं

0: ये सात मात्रा का ताल है, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना। तो ये रूपक ताल जो है इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं, और ज़्यादातर गीत जो रूपक ताल में बने हैं वो सारे के सारे गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो जो है सात मात्रा का चक्र जो है
1: जी
0: वो इतनी खूबसूरती से आता है कि वो बड़ा लुभावना बन जाता है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं रूपक ताल के।
1: जी और जहां तक मेरा ख्याल है, ये एक ही ताल है जिसकी शुरुआत खाली से होती है।
0: हाँ, खाली से होती है, ती पर खाली है, ती ती ना धी ना धी ना,
1: जी,
0: तो वो खाली से शुरू होने वाला ये।
1: और ये निरालापन ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है,
0: बिल्कुल।
1: और इसी वजह से वो सारे गीत जिसमें निबद्ध होते हैं रूपक में
0: हाँ,
1: तो बड़े सुनने को
0: बहुत ही अच्छे
1: कर्णप्रिय
0: लगते
1: होते
0: हैं।
1: हैं। तो इस ताल में निबद्ध कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं?
0: आपकी नजरों ने समझा,
1: क्या बात है, अनपढ़ फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है, लता जी के स्वर में, मदन मोहित साहब की संगीत रचना।
0: जी
1: आइए सुनते हैं।

0: रूपक ताल में निबद्ध ये गीत हम सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म से। रविंद्र जी, रूपक के बाद अब किस ताल की चर्चा करेंगे?
1: रूपक से ही बहुत करीबी रिश्ता रखता है। जैसे रूपक की 7 मात्रा है,
0: जी जी,
1: तो उसकी दुगनी 14 मात्रा, 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है। अभी ये जो है रूपक जो है वो ती ती ना धी ना धी ना ती, ये रूपक है। और दीपचंदी जो है वो धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा, तो ये जो है ये रूपक के साथ में ही दीपचंदी है, जो दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है। तो दीपचंदी की भी कई सारी रचनाएं हुई है, और इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि रूपक का जो गीत है वो हम दीपचंदी में भी गा लें या दीपचंदी का जो गीत है वो हम रूपक में भी गा लें,
0: ऐसा नहीं होता,
1: क्योंकि वो दोनों ताल की अपनी अपनी खूबसूरती है और अपना अपना उनका एक लहजा है, तो उसी लहजे में वो आता है। इसलिए दीपचंदी के गीतों का भी एक अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छा लगता है।
0: मिसाल के तौर पे कौन सा गाना
1: दीपचंदी में? अजीर उठकर अब कहाँ जाइए,
0: आरजू फिल्म की बात आप कर रहे हैं?
1: जी,
0: बहुत ही सुंदर गीत है जो राग देश पर आधारित है, और दीपचंदी में निबद्ध इस गीत को पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बात।

0: श्रोताओं, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म आरजू से, लता मंगेशकर का स्वर। ऐसा ही एक और गीत है रविंद्र जी,
1: जी
0: कश्मीर की कली फिल्म से।
1: हाँ।
0: ये भी ताल दीप चंदी में निबद्ध है।
1: हाँ।
0: इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: इशारों इशारों में दिल लेने वाले,
0: इसकी भी झलक सुनते चले।
1: बिल्कुल।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये थी झलक कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत की, जो ताल दीप चंदी में निबद्ध है और राग पहाड़ी पर आधारित है। संगीतकार ओपी नैयर। रविंद्र जी, रूपक 7 मात्रा का ताल है और दीप चंदी 14 मात्रा का।
1: हाँ।
0: फिर इन दोनों तालों का एक साथ प्रयोग किसी गीत में कभी हुआ है?
1: बिल्कुल हुआ है, और वो जो गीत है वो मेरे ख्याल से सभी का बड़ा प्रिय गीत है, वो पिया तो से नैना लागे रे। बहुत ही खूबसूरत गाना है और कई सारी विशेषताएं इसमें है। एसडी बर्मन साहब का मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग हम कह सकते हैं। ये इसमें जो है ना वो है तालवाद्य कचेरी।
0: जी,
1: तालवाद्य कचेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तालवाद्य है और उन तालवाद्यों का सोलो परफॉर्मेंस। तो तालवाद्य कचेरी के तो अपने स्वतंत्र कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको ये फिल्म गीतों में लाना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है और जो एसडी बर्मन साहब ने किया है। तो पिया तो से नैना लागे में ये जो गीत है तो इसमें वो तालवाद्य कचेरी अंत में बजती है, लेकिन ये जो गाना है इसमें रूपक भी है और उसके साथ साथ दीपचंदी भी है। तो दीपचंदी और रूपक दोनों को सुनने का मज़ा इसमें है, इस गाने में। मतलब जो उसका वजन एक बार रूपक का है एक बार दीपचंदी का है, दोनों बहुत ही अच्छा।

0: लिखते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है जो है कि तबले का उपयोग फीलर की तौर पर, मतलब इंटरलूड।
1: अच्छा।
0: जो गाने के बीच में जैसे वो शब्द आता है पिया तो से धगने धिन्न धनन, तो ये जो छोटा सा पीस है जिसको हम इंटरलूड कहते हैं, तो अक्सर वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं। ये इस गाने में वो तबले पे बजा है इंटरलूड, और वो बहुत ही खूबसूरत है।

0: रूपक ताल और दीपचंदी ताल का साथ साथ प्रयोग जिस गीत में किया गया, गाइड फिल्म का वही गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज हमने आपको सुनवाई इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष।

प्रकृति का पुकारता स्वर, पर्यावरण बचाएं, भविष्य बचाएं। कार्यक्रम नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम इस कार्यक्रम में करते हैं स्वागत। कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को सही रूप से जी रहे होंगे। श्रोताओं, आज है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। वैसे तो हम सभी बहुत जागरूक हैं और सभी हर बातों को जानते भी हैं, लेकिन जीवन की ये छोटी छोटी बातें कभी कभी हम भूल जाते हैं। इन्हीं बातों को आपके दिलों में दोबारा से जागृत करने के लिए हम लेकर आते हैं अपना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, आज पर्यावरण दिवस पर हमारा बहुत ही विशेष कार्यक्रम है और पर्यावरण दिवस यह केवल एक दिवस नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, कहीं हम उसी जीवनदाता को संकट में तो नहीं डाल रहे। जी हाँ, धरती हमारी माँ है, हम सभी जानते हैं और कहते भी हैं।

और हम सभी ने बचपन से सुना है माता भूमि है पुत्रो अहम पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। लेकिन आज यही धरती माँ अपने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ रही है। क्या हमने उसके जंगल को बचाया? क्या हमने उसकी नदियों को स्वच्छ रखा? क्या हमने उसकी वायु को शुद्ध बनाए रखा? आज का यह कार्यक्रम श्रोताओं इन्हीं सवालों पर केंद्रित है। हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति जो है आज विश्व पर्यावरण दिवस। श्रोताओं, हमारे वृक्षों में देवत्व देखा है, नदियों को माता कहा है, पर्वतों को पूजनीय माना है। पीपल बरगद नीम और तुलसी जैसे वृक्ष हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। जब हम गंगा को माँ गंगा कहते हैं, जब गोवर्धन पर्वत की हम पूजा करते हैं, जब तुलसी माँ की हम विवाह भी करवाते हैं, तब हम केवल परंपरा नहीं निभाते बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। और हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रकृति का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। तो इस विषय पर हम आपसे बातें और भी करेंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ, पर्यावरण, इसका अर्थ हमारे चारों ओर मौजूद एक समस्त प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्था जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, उससे कहा जाता है। वायु, जल, मिट्टी, वन, पशु पक्षी, पर्वत, नदियां और मनुष्य सभी मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। यदि इनमें से एक भी तत्व असंतुलित हो जाए तो जीवन निभाना बहुत कठिन हो जाता है। और आज दुनिया कई पर्यावरणीय समस्याओं से घिरी हुई है, आप सभी जानते हैं, जैसे बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, वनों की कटाई और जैव विविधता का विनाश। श्रोताओं, आप देखते भी आ रहे हैं कि हर गर्मियों में हर वर्ष और अधिक गर्म होती जा रही है। कभी ऐसे में वर्षा हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह सब केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं श्रोताओं, बल्कि मानव गतिविधियों का ही परिणाम है। और कल्पना कीजिए, यदि एक दिन पेड़ बोलने लगे तो वे हमसे क्या कहेंगे? वे शायद कहेंगे, मैंने तुम्हें छाया दी, फल दिए, प्राण वायु दी, तुम्हारे बच्चों को झूले दिए, तुम्हारे पक्षियों को घर दिए, फिर भी तुमने मुझे काट दिया। यदि नदियां बोल पाती तो शायद वो यही कहती कि मैंने तुम्हारी प्यास बुझाई, तुम्हारे खेतों को सींचा, तुम्हारी सभ्यताओं को जन्मा, लेकिन बदले में तुमने मुझे प्रदूषण दिया। और दोस्तों, पेड़ों की पुकार होगी कि पेड़ कह रहे हैं धीरे से, मत काटो, हमको जीने दो, धरती की सूनी गोद में फिर से हरियाली सीने दो। हमसे ही वर्षा आती है, हमसे ही जीवन गाता है, हम गिर जाएं तो मानव का सारा भविष्य मुरझाता है। आओ मिलकर वचन करें, हर आंगन में एक वृक्ष लगे, धरती माँ के आंचल में फिर से हरियाली फूल खिले। श्रोताओं, ये सभी बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और हम सब जानते भी हैं कि पर्यावरण को संरक्षित

रखना, सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, कचरा हम सड़कों पे फेंक देते हैं, और तो और पेड़ों की कटाई छटाई के साथ साथ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको भी काट देते हैं अपने उपयोग के लिए या कभी किसी और कारण से। तो श्रोताओं, विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि आप पर्यावरण को बचाएं, संरक्षित रखें, क्योंकि ये पर्यावरण ही हमारे जीवन का अमूल्य अंग है।

श्रोताओं, आज है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। और आज के इस दिन में यदि हम बच्चों की भूमिका देखें तो वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि बच्चे किसी भी समाज का भविष्य होते हैं। यदि बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं तो पूरा समाज भी जागरूक हो सकता है। वे छोटे छोटे कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, जैसे पौधे लगाना, पानी बचाना, बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और स्वच्छता बनाए रखना। याद रखिए, बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होता है और जल ही जीवन है, ये सभी जानते हैं। और आज दुनिया के कई हिस्सों में पानी पीने योग्य नहीं बचा है, तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। यदि हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें शायद कभी माफ नहीं कर पाएंगी। श्रोताओं, बरसात के पानी का संग्रह करना बहुत जरूरी है। पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल स्रोतों की सुरक्षा रखना यानी उनकी साफ सफाई करना भी हमारा ही कर्तव्य है। एक परिपक्व वृक्ष केवल छाया ही नहीं देता बल्कि वह हजारों लीटर पानी को भी संरक्षित करता है, मिट्टी को बचाने और वातावरण को शुद्ध रखने में भी मदद करता है। श्रोताओं, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प तो ले ही सकते हैं, लेकिन केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए एक छोटी सी कविता कहूंगी कि धरती रोई अंबर रोया, जब जंगल का सीना खोया, नदियों ने भी स्वर में बोला, मानव तू क्यों इतना भोला, काट रहा है जिस डाली को, बैठा है तो उसी के सहारे, यदि ना बची यह हरियाली कैसे कटेंगे दिन तुम्हारे। श्रोताओं, शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और हरित पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है और ये सभी जानते हैं, लेकिन प्रदूषित वातावरण अनेक बीमारियों का कारण भी बनता है, ये भी हम सभी जानते हैं। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करना केवल प्रकृति की रक्षा ही नहीं बल्कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा भी है। और इसमें हम

सभी सामूहिक जिम्मेदारी भी निभाई सकते हैं, जैसे सरकार योजनाएं बना सकती हैं, संस्थाएं अभियान चला सकती हैं, लेकिन श्रोताओं वास्तविक परिवर्तन तभी होगा जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, जब हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे, जब हम अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, जब हम जल और ऊर्जा की बचत करेंगे, तभी पर्यावरण संरक्षण संकल्प सफल होगा।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग है मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में चलते चलते कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। पेड़ों की पुकार, मत काटो इन पेड़ों को, ये धरती की मुस्कान है, इनकी छाया में ही बसती जीवन की पहचान है। जब थक जाता है मुसाफिर, ये बाहें फैलाते हैं, बिन कुछ मांगे हम सबको शीतलता दे जाते हैं। नदियां रोती हैं चुपके से जब उसमें विष घुल जाता है, प्रकृति माँ का कोमल आंचल धीरे धीरे जल जाता है। पक्षी पूछें किस डाली पर अब अपना घर बनाएंगे, अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो गीत कहाँ गाएंगे। आओ मिलकर प्रण ये ले, हरियाली का मान करेंगे, एक नन्ही 100 पेड़ लगाकर धरती का सम्मान करेंगे। स्वच्छ हवा हो, निर्मल जल हो, ऐसा सुंदर कल लाएंगे, प्रकृति माँ के चरणों में हम अपना प्रेम चढ़ाएंगे। धरती केवल मिट्टी नहीं, ये माँ का पावन रूप है, इसकी रक्षा करना हम सबका सबसे पहला कर्तव्य है। आओ आज यह वचन करें, जब तक सांसें चलती रहेंगी, प्रकृति की हम रक्षा करते रहेंगे। दोस्तों, चलते चलते इस कार्यक्रम के अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि हरा भरा देश हमारा रहे, यही हमें सोचना है और इसका ही हमें प्रण लेना है। और विश्व पर्यावरण दिवस का संदेश केवल एक दिन का तक सीमित ना रहकर इसे हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रकृति से प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रकृति बचेगी तो ही जीवन बचेगा। और कहा भी गया है श्रोताओं कि प्रकृति में पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतु, पशु पक्षी सभी आते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने आसपास सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें, पक्षियों के लिए दाना डालें, पानी रखें, ताकि इस गर्मी में उनको राहत मिल सके। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत हमारे आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं हम फिल्म संगीत लेकर, और लीजिए आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले के स्वर में फिल्म दो बदन का ये गीत।

0: पड़ोसन के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: छोटा भाई है ना,
2: बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र

0: बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी।

0: आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब,

0: और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सुबह के 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। सवेरे के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी द्वारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है।

0: है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
0: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
0: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है!
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है! श्रोताओ, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गाँव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गाँव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
0: जी।
1: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
0: जी।
1: है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं
0: जी।
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओ, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता

0: में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करी है
4: उसका। खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
6: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
7: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
8: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
9: जी महाराज,
7: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे, क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
10: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी कैसे हो सकता है
5: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम
10: कैसे हो सकता है?
5: आया था
10: राजा, नकली ही ना दे सकता,
5: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
7: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
5: महाराज क्षमा करें,

0: हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
2: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
3: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
6: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं, चल चलू मैं।

तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सभी मिशन लाइफ की भावना से काम करते रहेंगे, साथ ही हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान शुरू होगा। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर

0: करेंगे। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान इस मानसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस पर समारोह रखा गया है, इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश में गंगा दशमी से शुरू हुए 15 दिन के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी आज समापन हो रहा है। अभियान के तहत आज जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिए जाएंगे। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बूढ़ा पुष्कर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के तहत जन भागीदारी से जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य किए गए।
1: जिले भर में अभियान के दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी की कई प्रेरक सफलताएं सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रहण संरचनाओं के पुनर्जीवन और पौधरोपण गतिविधियों ने लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन अवसर पर जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन, तुलसी पौध वितरण, हरियाणा राजस्थान अभियान की तैयारियां तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने विश्व भर के खिलाड़ियों से चैंपियनशिप के बाद भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहने का आग्रह किया।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: 8 जून तक चलने वाली इस योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को अलग अलग श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए। योजना के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में राजस्थान को मई महीने के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में 2रा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन वाले 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा सचिव और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिली है। वे कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए उनकी सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जालौर झालावाड़, श्रीगंगानगर कोटपुतली, अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारी

0: अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाकर उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में श्री डांगी ने कहा कि वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। श्री डांगी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। दूसरी ओर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से कल राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं। सवाईमाधोपुर में रात से ही रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के गुलाबपुरा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुरा और मांडलगढ़ सहित भीलवाड़ा में हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि कपास की फसल में ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। पाली में अलसुबह तेज अंधड़ से पेड़ और होल्डिंग्स गिर गए। भरतपुर में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई। कोटपुतली, बहरोड के नारायणपुर, विराटनगर और पावटा सहित विभिन्न स्थानों पर कल रात बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आंधी और बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका जताई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून केरलम पहुंच गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले। और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM मेडिक 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज 4 बजे शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में, इब्राहिम अश्क की शब्द रचना है, राजेश रोशन की बनाई तर्ज।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आप मुझे अच्छे लगने लगे अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में। और अब आपको कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल सोना मोहपात्रा की आवाजें कुमार का लिखा गीत विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को पुनः 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। सुनना नहीं भूलिएगा।

अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा मुझे यानी पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनाओ आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने

तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

फिर आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि

दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

और फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था, लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कला

कलाकार भी हैं जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती।

इसके बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतनधन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सुबह का 10 बजे हैं। विविध भारती के कार्यक्रम अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम।
3: 67028 यानी 28670288 और 022400246622 यानी 400246622। सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
4: नमस्कार सर जी।
3: नमस्कार।
4: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
3: क्या बात है, कैसी हैं आप?
4: बहुत ही अच्छे हैं। मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
3: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये। हाँ
4: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश में फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
3: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
4: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदि हैं और हमें हर मौसम में अपना उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
3: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
4: हाँ, फिल्म का नाम है हम आपके है कौन।
3: अच्छा।
4: उस फिल्म में लता मंगेशकर SP बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
3: जी।
4: इसके बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: इससे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है। ये वाला गीत सर जी।
3: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
4: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए सर जी। जब MP था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई MP में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और MP।
3: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
4: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
3: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोल

0: कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना।
1: नंदी मी मीरू मी नचकुने पाटा।
0: अरे बाप रे बाप। नहीं इसको को थोड़ा छोटा बोलिए।
1: वेनवंडी मीरू मी नचिंदी पाटा।
0: वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा। सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश,
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल के। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का एक गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आके टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, रूही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर
0: जी, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे
1: हैं? हम अपने एमपी सागर से विक्रम सिंह और पचाली राजा।
0: विक्रम सिंह सागर में कौन से इलाके से बोल रहे हैं?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है भी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है, अभी आपको थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई है थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ। अभी तो 9 तपा चल रहे ये खत्म हो गए।
1: जी सर, बिल्कुल 3 दिन बाकी हो सर, तनक
0: बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए, फिर मौज हो जाए। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं ये बताओ।
1: हमको सुना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नंबर है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा तो मारा।
0: ए दद्दा रे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
1: आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया, आपसे बात
1: करके आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है।
1: आपका बिल्कुल सर, बुंदेलखंड जैसा बटका है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा? क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों मेरे

लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राग सुनाती है, वो ठुमक ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरे भैंस को डंडा,

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है, वो गुस्सा जब भी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है। अंगारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी।

रखा जहां नारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का बोझा करती थी। मेरी भैंस को डंडा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन?
1: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
0: ज्योति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: पीतमपुर जिला धार, मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए क्या हाल चाल है पीतमपुर के?
1: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं
1: जी?
0: अब हमें ये बताइए, हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी के से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी अपने साथ लेके जाए।
0: बहुत सही, बिल्कुल।
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले।
0: सही बात है। अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश है?
1: गाना, फिल्म का नाम है सूरज।

0: कोतवाली मुंबई से बात कर रहा हूँ
1: जी। बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया हूँ।
1: क्या सुनना चाहते हैं आज?
0: पैसा फिल्म के गाने सुनना चाहते हैं। पैसा
1: गाने के बोल बताइए।
0: जिन्हें ना रहे इन लोग पर वो कहाँ है।
1: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
0: बहुत बढ़िया गाना है
1: जी।
0: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
1: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
0: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या गर्व था
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुल गोविंद मिश्रा, उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने दिल्ली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर।
0: जी,
1: बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा था।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये तीन दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी,
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर, वो वाला फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक जो शुरुआत किए है, 1 बजे जो सुनता हूँ, वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन

0: से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी, दोस्ती फिल्म का राही मनवा दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपना

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे मैं नहीं आप तो। मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया। क्या बात है
0: मजा आ गया, क्या बात है। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपके बड़े मतलब सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी।
0: अरे बाप रे,
1: मैं भी बात कर रही हूँ। यस
0: क्या बात है। देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
1: पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में सब आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो

0: राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से? यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात।
1: ओहो क्या बात है।
0: वो राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है वैसे ही, मैं आप भी मेरे जहन में हो
1: जी।
0: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत, सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ
1: जी।
0: लोग मेरे से तंग आ गए, कितना बजाओगी करके।
1: अच्छा विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहे हैं आपके साथ, है ना?
0: मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूं, जीवन का यही लक्ष्य है बस।
1: क्या बात है जी। तो बताइए कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
0: सभी कार्यक्रम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
1: जी,
0: वो बहुत अच्छे रहते हैं
1: जी।
0: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली और सब। आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
1: हाँ, जी, जी,
0: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ
1: जी।
0: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
1: अच्छा क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
0: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
1: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद है आपको?
0: अरे अरे मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले आते, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
1: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है,
0: क्या बात है। थैंक यू
1: जी, शुक्रिया।
0: बचपन से आप बिलीव नहीं करो, आई एम 57 नाउ, और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
1: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध भारती सुनते हुए।
0: बस सब सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बचती।
1: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
0: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात। थैंक यू।
1: शुक्रिया, हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म, और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी बताइए।
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेतीबाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया, मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। और कई इसके कारण होंगे भैया, सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंग के गीत के बोल है, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-2466-2। अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया दो महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है।

0: जीवों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप FM बैंड 103.1 MHz पर, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। दिन के ठीक 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी, एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम खत्म होता है। रंग तरंग।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो

0: इटवा है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
3: At 5.25%.
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: इस छोटे से अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ।
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा।
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी

0: वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।

है छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रकृति का संतुलन को बनाए रखना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के

0: अवसर पर आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने ये बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और ये हम सभी का दायित्व है कि हम भी उसे बदले में कुछ दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।
1: प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ हमें देती है। जो आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हमारी ये प्रकृति करती है, सब कुछ हमें देती है। इसको कुछ हम भी देना तो सीखें, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। चाहिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इसके क्षेत्र में मैं ये काम करूंगा, या मेरे खुद के व्यवहार में चेंज लाते हुए मैं पानी की बिजली की बचत भी करूंगा और पर्यावरण में मेरा सहयोग करूंगा।
0: मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य को कई सौगात दी। उन्होंने अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से इन औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पता लगाया जा सकेगा। इस दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल और CSIR सीरी पिलानी के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए MOU किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन में इको फ्रेंडली तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने चार औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए ग्रीन को रेटिंग पुरस्कार दिए गए। श्री शर्मा ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया। ये कार्यालय जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा और झुंझुनू में बनाए जाएंगे। उन्होंने 7 वन पौधशालाओं का भी लोकार्पण किया। साथ ही वन्य जीवों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए 8 प्री बेस एनक्लोजर का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर शुरुआत की। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। गंगा दशमी से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज ही संपन्न हो रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में समारोह रखे गए हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को जल गौरव सम्मान दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा की खारी का लांबा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह गांव का भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का गांव की प्राचीन बावड़ी में जल पूजन का भी कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा का जयपुर में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इसे सहकारी परिवहन पहल को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के नागरिक अब भारत टैक्सी की बाइक, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर में लगभग 13,000 टैक्सी चालक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि नए ग्राहक ऐप के माध्यम से यात्रियों को सुलभ किराया, पारदर्शी और निश्चित दरें, SOS आपातकालीन सुविधा, स्थानीय और विश्वसनीय चालक तथा बेहतर ग्राहक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

तो भाई ये गाना आपने सुना फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं और ज़्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा हिमानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहाँ, चलो हम दोनों चले वहाँ। जहाँ दिन भर महुआ पर झूले, रात को चुप पड़ते हैं फूल। जहाँ दिन भर महुआ पर झूल, रात को चुप पड़ते हैं फूल। बांस के झुरमुट में चुपचाप जहाँ सोए नदियों के कूल। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहाँ, चलो हम दोनों चले वहाँ। विहग मृग का हो जहाँ निवास, जहाँ अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी, काफ़ी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूँकि टिप्पणियाँ आ रही तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफ़र में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना, नदी चलता नीले नंबर अंबर, चांद जब आए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली, पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं, तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफ़र में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों के चंचलता को जीवंत कर दिया है। ज़रा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं अगर, तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज़ एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, ज़रा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्चि में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ

नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी। ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्ची में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान, बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थी और फिजाएं थी, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

आप बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफ़र में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है। कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम, और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए, जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ ख़ास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे, जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए, याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2x4 बताइए, किसकी है आवाज़, किसका है संगीत और किसका है गीत।

दो दूनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी ज़रा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गुलजार गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जब पैरों में पॉलीथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ़ सफाई का ख्याल भी रखें। फ़िलहाल सुने ये गाना

किनारा। दिल्ली का ठग फिल्म का गाना आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी। आज की इबारत से समझ में आ रहा है भाई, अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नज़ारे हैं, बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

फिनिल झरने सुंदर कुदरती नज़ारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस ज़मीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, ज़रा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार, पेड़ पौधे, नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं। गाँव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी। वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है

0: जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं, ये गाना फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: प्यार करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है?

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सब के सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियाँ हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी ज़रा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

झरना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़ें और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार संगीतकार का नाम ज़रा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई ख़ास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफ़र में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है, तो आप बताइए क्या था। हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफ़र। ये सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफ़र। ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: 1800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे

0: बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद

0: नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
1: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकली है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा

0: होकर के इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो।
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: तो, हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के।
0: अरे,
1: सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए, हाँ, आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: मनकापुर सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, ITI कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो
0: जी हाँ।
1: उनकी याद में गाना सुनेंगे, उनकी आवाज में तो जो

0: उनके जो भी फिल्में हैं मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद दे दीजिए।
1: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं।

0: तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में कम निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो सिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उसको थोड़ा कम समय दे पाते हैं, 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को ही आता है 9 बजे। छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं, क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं मैम हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है, अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह,

0: तो आप कैसी सास सुमा है, कड़क वाली कि अच्छी वाली?
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं नहीं आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है, और शाम की टाइम तो हम रोज घूमने जाते हैं, मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
2: तू कितनी अच्छी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना घर में, तो सब मैंने सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी
1: हैं। हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: तो सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, तो मेरा रेडियो चालू हो जाता है

0: रामायण से चालू होता, भूले बिस्तरी संगीत सविता, भूले बिस्तरी गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुने और किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
1: बहुत बहुत अच्छी बात है ये, संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
0: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
1: ये अच्छी चीज है।
0: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना। घर में मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सबने।
1: अरे वाह,
0: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, और मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
0: मेरा पिया जो जबलपुर का है
1: जी,
0: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो हमारी हमारी जीवन देते हैं। मुझे
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: गाना सुनूंगी गागो साइड खान का, नाचो तू बंसी बजा। हाँ
1: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपको बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी, मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे
1: हाँ।
0: ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस, बिल्कुल म्यूजिक तो ऐसी चीज
0: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत
0: जी। तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
0: जी। और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है। क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है।
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके।
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है, और सब पूरी फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके पर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए।
0: बिल्कुल।
1: जो है
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे है, बहू है, पोती है।
0: बहुत बढ़िया। तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से।
1: जी जी जी जी।
0: तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए, वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत
1: जी,
0: अच्छी
1: जी,
0: बात है ये।
1: और चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह बहुत है।
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना।
1: तो बिल्कुल आती हैं, सब खेलती हैं,
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
1: जी जी जी।
0: तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये, आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है।
0: तो आप कहाँ से?
1: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत?
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको? और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जादवर फिल्म में का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गरम गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है, तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाए देंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत

0: अच्छी बात है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा? अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी

0: ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का, और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा, और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूँ। संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफ़ी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते।

याद है वो दीपेश जी अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है। भावना हंसकर कहने लगी, बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

0: सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।
1: सासु जी तो

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना, फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो, नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती है? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज़ आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी। मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से एक गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी, बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी, वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी, आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ। आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के ठीक 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं हमारी सभी सखियां? उम्मीद करती हूं अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगी और अपने मनपसंद कार्यक्रम को सुनने के लिए कर रही होंगी मेरा बेसब्री से इंतज़ार। तो लीजिए सखियों, आज मैं हाजिर हूं लेकर आपके लिए नई नई जानकारियां और मधुर गीत संगीत। सखियों, आज हम चर्चा करेंगे हरित ऊर्जा। हरित ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की गारंटी। सखियों, हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी से मतलब ऐसी ऊर्जा से है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले स्रोतों की बजाय प्राकृतिक और नवीकरणीय रिन्यूएबल साधनों से उत्पन्न होती है और इसके उत्पादन और उपयोग से शून्य या नगण्य कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण होता है। सखियों, आपको बताते हैं हरित ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, तेज हवाओं के जरिए टरबाइन चलाकर बनाई गई बिजली, जल विद्युत, हाइड्रो पावर, बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग करके भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर की गर्मी का उपयोग करके बनाई जाती है, बायोमास, जैविक कचरे और पौधे से प्राप्त होती है। सखियों, वर्तमान में हमारी जीवन शैली और बिजली पर निर्भरता के बिना जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन है। विद्युत संबंधी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम ज़्यादातर जीवाश्म कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि पर निर्भर रहते हैं और समय के साथ साथ धरती से यह ऊर्जा स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण इन स्रोतों से

उत्पन्न होने वाली बिजली के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बिजली उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना न केवल आपके बजट पर प्रभाव डालता है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। कोयला, डीजल, पेट्रोल जैसे ऊर्जा स्रोतों से पैदा होने वाली बिजली से हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल हैं। और इन गैसों से वृक्षों, हवा और धरती पर मौजूद सभी प्राणियों को नुकसान होता है। सखियों, इन गैसों के कारण हर साल धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इनसे होने वाली गंभीर बीमारियों के साथ साथ अन्य सभी जीव जंतुओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब आइए सखियों जानते हैं कि हरित ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की गारंटी कैसे है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, यह बिजली उत्पादन के समय हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें नहीं छोड़ती, जिससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होता है। कोयले और तेल जैसे सीमित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता खत्म होती है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। नई तकनीकों से सौर ऊर्जा अब बेहद किफ़ायती हो गई है, जिससे लंबे समय तक बिजली बिल और कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। स्वच्छ हवा और पानी से सांस की बीमारियों और अन्य प्रदूषण जनित स्वास्थ्य समस्याओं में भी भारी कमी आती है। सखियों, आप सोच रही होंगी कि बातें तो बहुत हो गई और मनोरंजन तो अभी तक करवाया ही नहीं, तो चलिए सखियों मिलकर सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सही उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा और आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। हवा, जल, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और प्राकृतिक संसाधन सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यदि पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित रहेगा तभी मानव जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता है। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं ने आज पूरे विश्व को चिंतित कर दिया है। इन्हीं समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सखियों, क्या आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करना है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में वृक्षारोपण, रैलियां, भाषण और स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाते हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आज पर्यावरण कई प्रकार के प्रदूषणों से प्रभावित भी हो रहा है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। कारखानों का धुआं, प्लास्टिक का अधिक उपयोग, वाहनों से निकलने वाली गैसें और पेड़ों की कटाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा और अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाएं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, हरियाली बढ़ाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जल और बिजली की बचत करने, स्वच्छता बनाए रखें, सार्वजनिक वाहनों, ग्रीन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी

तेज वाहनों का साइकिल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का कम उपयोग करें, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी हमारा नैतिक दायित्व है। सही, विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं बल्कि यह समझने का अवसर है कि प्रकृति के साथ संतुलित संबंध ही जल, जलवायु और भविष्य के सुरक्षा की बुनियाद है। कभी गर्मियों की पहचान आम के बौर, कुओं के पानी और मानसून के इंतजार से होती थी। दोपहरें तपती थीं, लेकिन मौसम का अपना एक स्वभाव और लय हुआ करता था। आज वही गर्मियां हीट वेव, जल संकट और मौसम की अनिश्चितता की खबरों के साथ आती है। जून की शुरुआत होते होते गर्मी का असर अपने चरम पर पहुंचने लगता है। शहरों में तापमान के नए रिकॉर्ड की खबरें आने लगती हैं, गांवों में जल स्रोत सिकुड़ने लगे हैं और मौसम का व्यवहार पहले से कहीं अधिक अनिश्चित हो गया है। कभी अचानक आने वाली बाढ़, कभी लंबा सूखा तो कभी असामान्य गर्मी की लहरें हमें लगातार यह याद दिलाती हैं कि पर्यावरण का संकट कोई दूर का खतरा नहीं बल्कि हमारे वर्तमान की वास्तविकता है। हम अक्सर पर्यावरण को केवल पेड़ पौधों, जंगलों या वन्य जीवों तक सीमित करके देखते हैं, जबकि यह सच है कि पर्यावरण हमारे जीवन का वह व्यापक तंत्र है जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, नदियां, जैव विविधता और जलवायु सब शामिल हैं। और इसी तंत्र पर हमारी खेती, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और भविष्य निर्भर करता है। इसी साझा जिम्मेदारी को याद रखने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है बल्कि यह याद दिलाने का अवसर है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। तो सखियों, अब वक्त हो गया है आपके गीत संगीत का, तो चलिए मिलकर सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

सखी उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा। और अब हम बात करते हैं एक पेड़ माँ के नाम अभियान की। सखियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 जून यानी आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही की गई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना और इस पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित रखना है। एक पेड़ माँ के नाम एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इस अभियान का उद्देश्य माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि एक हरे और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान देगा। माँ और प्रकृति दोनों ही जीवन का मूल आधार हैं और इस पहल के माध्यम से हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम का हिस्सा आप भी बने और अपनी माँ के लिए एक अविस्मरणीय स्मृति बनाने के लिए एक पौधा ज़रूर लगाएं। और आप यह घर, बगीचे या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पौधारोपण करके भी कर सकते हैं। तो चलिए सखियों, इसी के साथ सुन लेते हैं एक और मधुर गीत।

सखियों, उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा। सखियों, मन तो करता है कि आपसे ऐसे ही बातें करती रहें, लेकिन घड़ी की सुई मुझे इशारा कर रही है। तो चलिए, चलते चलते आपको सुनाती हूँ। श्रृंगार भूधर बन सघन, श्रृंगार भूधर बन सघन, सरित सलिल रस आचमन, मकरंद गंध सुहावनी, डोली उठा झूमे पवन। है स्वर्ग से सुंदर धरा, है स्वर्ग से सुंदर धरा, अंतर निहित अनुपात में रखना जरूरी संतुलन, बस ध्यान रख इस बात में। वसुधैव सारा तंत्र है, वसुधैव सारा तंत्र है, कल्याण मेरा मंत्र है, लौकिक चराचर युक्ति है, लौकिक चराचर युक्ति है, अद्भुत अलौकिक यंत्र है, संयम सहित उपयोग का जब तक करोगे आचरण, होता रहेगा तब तलक हर

आपदा का परिहरण। तो सखियों, वक्त मन तो करता है कि आपसे ऐसे ही बातें करते रहें, लेकिन घड़ी की सुई मुझे जाने का इशारा कर रही है। तो फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों और मधुर गीत संगीत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त आपकी सखी रश्मि को। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे कनिका और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रोग्राम युववाणी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी लाइन साझा करना चाहती हूं जो जीवन को बहुत बड़ा सत्य, जीवन का बहुत बड़ा सत्य अपने भीतर समेटे हुए है। संघर्ष में प्राय व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में सब साथ होते हैं। जरा आप सोचिए, जब कोई छात्र रात रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी करता है, तब उसके कमरे की लाइट, उसकी किताबें और उसका संकल्प भी उसके साथ ही होते हैं। लेकिन जब परिणाम आता है और वह सफल हो जाता है, तब बधाई देने वालों की लंबी कतार लग जाती है। जब कोई खिलाड़ी सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करता है, तब मैदान पर भीड़ नहीं होती। लेकिन जब वह पदक जीतकर लौटता है, तब उसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यही तो जीवन की सच्चाई है दोस्तों। संघर्ष का रास्ता अक्सर सुनसान होता है। यहाँ तालियां नहीं बजती, यहाँ प्रशंसा के शब्द कम सुनाई देते हैं। कई बार तो अपने भी आपके सपनों पर सवार उठा देते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संघर्ष वो मिट्टी है जिसमें सफलता का बीज अंकुरित होता है। युवाओं के जीवन में यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज का समय सोशल मीडिया का समय है। हम अक्सर लोगों की उपलब्धियां देखते हैं, उनकी ट्रॉफियां, उनके पुरस्कार, उनकी यात्राएं, उनकी खुशियां। लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो है उनका स्ट्रगल, वह असफलताएं जो उन्होंने झेली, वह दिन जब उन्होंने हार मानने का सोचा, वह रातें जब उन्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। याद रखिए, सफलता एक घटना है, लेकिन संघर्ष एक यात्रा है। और यात्रा हमेशा अकेले कदमों से शुरू होती है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई हमारी मेहनत को समझ नहीं रहा। ऐसे समय में एक बात याद रखिए, यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। दूसरों की स्वीकृति का इंतजार मत करिए, क्योंकि दुनिया अक्सर परिणामों का सम्मान करती है, प्रयासों का नहीं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। इसलिए अगर आज आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है यही अकेलापन आपको सबसे मजबूत बना रहा हो सकता है यही

संघर्ष आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा हो जिसकी आपने कल्पना की है, और जब सफलता आपके कदम चूमेगी तब लोग केवल आपकी जीत देखेंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा कि उस जीत की नींव किन संघर्षों पर रखी गई थी। इसलिए आज का संदेश यही है कि अकेले संघर्ष करने से मत घबराइए, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में खुद का साथ निभाना सीख लेता है वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। संघर्ष को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए।

अब बात होगी दोस्तों उन महिलाओं की जिन्होंने अपने बल्ले की ताकत से क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कोहराम मचाया कि दुनिया देखती रह गई। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का नया सीजन करीब है। दुनिया भर की टीमें तैयारियों में जुटी हैं और फैंस को एक बार फिर रोमांचक मुकाबलों का इंतजार है। लेकिन नए रिकॉर्ड बनने से पहले क्यों ना एक नजर उन दिग्गज बल्लेबाजों पर डालें जिन्होंने महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाकर अपना नाम

स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं टॉप फाइव रन मशीनों की शानदार गिनती को। नंबर वन, सूजी बेट्स, न्यूजीलैंड। दोस्तों, इस सूची में सबसे ऊपर है न्यूजीलैंड की अनुभवी बल्लेबाज सूजी बेट्स। उन्होंने वर्ष 2009 से 2024 तक खेले गए 9 T20 वर्ल्ड कप संस्करणों में 42 पारियों के दौरान 1216 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी औसत 31.17 और स्ट्राइक रेट 111.05 रहा है। इतना ही नहीं, उनके नाम 8 अर्धशतक भी दर्ज हैं। सूजी बेट्स की सबसे बड़ी ताकत रही है लगातार अच्छा प्रदर्शन और टीम के लिए जिम्मेदारी निभाना। नंबर टू, स्टेफनी टेलर, वेस्ट इंडीज। दूसरे स्थान पर हैं वेस्ट इंडीज की स्टार खिलाड़ी स्टेफनी टेलर। उन्होंने 35 पारियों में 1014 रन बनाए हैं। उनकी शानदार बल्लेबाजी औसत 37.55 रही है, जो उनके प्रभाव को और भी मजबूत बनाती है। कई बड़े और दबाव वाले मुकाबलों में स्टेफनी टेलर ने अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। नंबर थ्री, एलिजा हिली, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज एलिजा हिली की। हिली ने 39 पारियों में 1008 रन बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक आंकड़ा खास ध्यान खींचता है, उनका स्ट्राइक रेट 129.39 रहा है। यानी सिर्फ रन बनाना ही नहीं, बल्कि तेजी से रन बनाना भी उनकी पहचान है। बड़े मैचों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी अक्सर विरोधी टीमों के लिए चुनौती बन गई। नंबर फोर, मैग लेगनिन, ऑस्ट्रेलिया। चौथे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मैग लेगनिन। उन्होंने 32 पारियों में 992 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी औसत 39.68 रही, जो इस सूची की सर्वश्रेष्ठ औसतों में से एक मानी जाती है। मैग लेगनिन का सर्वोच्च स्कोर 126 रन है। उन्होंने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से ऑस्ट्रेलिया को कई यादगार सफलताएं दिलाई। नंबर फाइव, सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड। और अब पांचवें स्थान पर है न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर सोफी डिवाइन। उन्होंने 37 पारियों में 785 रन बनाए हैं। सोफी डिवाइन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और लंबे शॉट्स के लिए जानी जाती हैं। कई मौकों पर उन्होंने अकेले दम पर मैच का रुख बदल दिया। अब एक दिलचस्प तथ्य, महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप फाइव बल्लेबाजों की सूची में फिलहाल कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। हालांकि भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय खिलाड़ी भी इस प्रतिष्ठित सूची में अपनी जगह बना पाती हैं। दोस्तों, महिला क्रिकेट आज सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल बन चुका है। सूजी बेट्स, स्टेफनी टेलर, एलिसा हिली, मैग लेगनिन और सोफी डिवाइन जैसी खिलाड़ियों ने साबित किया है कि क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड बनाने के लिए जुनून और समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। अब सभी की निगाहें अगले महिला टी20 वर्ल्ड कप पर होंगी, जहां नए सितारे इन रिकॉर्ड्स को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। तो क्या कोई नया नाम इस सूची में शामिल होगा या कोई पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, इसका जवाब वक्त देगा। चलिए चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, वेलकम फ्रॉम द म्यूजिकल ब्रेक। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मानसिक स्थिति के बारे में जिसे अक्सर लोग ओवरथिंकिंग या ज़्यादा संवेदनशील होना समझ लेते हैं, लेकिन कई बार यह उससे कहीं अधिक गंभीर हो सकती है। ज़रा सोचिए, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि लोग जानबूझकर आपको टारगेट कर रहे हैं? क्या किसी का सामान्य मजाक या टिप्पणी भी आपको लंबे समय तक परेशान करती है? क्या आपको अक्सर लगता है कि लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं या कोई साजिश कर रहे हैं? अगर ऐसा बार बार और बिना किसी ठोस वजह के महसूस होता है तो यह पैरानोइया का संकेत हो सकता है। दोस्तों, कई लोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या अपने सामाजिक

जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी की सामान्य कमेंट, हल्का फुल्का मजाक या किसी की साधारण सलाह उन्हें ऐसा महसूस करा सकती है कि सामने वाले व्यक्ति जानबूझकर उनका अपमान कर रहा है। धीरे धीरे ये सोच बढ़ने लगती है और व्यक्ति को लगने लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं या उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और यही स्थिति कई बार पैरानोइया की ओर इशारा करती है। तो आखिर पैरानोइया क्या है? क्लीवेकेंट क्लिनिक के अनुसार, जब कोई व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के दूसरों पर शक करने लगे कि वे उसके खिलाफ बातें करते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस सोच की स्थिति को पैरानोइया कहा जाता है। यह विचार कभी कभी थोड़े समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में लंबे समय तक भी बने रह सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार साइकोसिस से पीड़ित लगभग 70% से अधिक लोगों में पैरानोइया के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कई बार उस व्यक्ति को उन बातों पर विश्वास करने लग जाता है जो वास्तव में होती ही नहीं है। अब सवाल ये है कि पैरानोइया क्यों होता है? NCBI और अन्य विशेषज्ञ स्रोतों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में यह अनुवांशिक कारणों से हो सकता है। मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर में बदलाव भी इसकी वजह बन सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर वे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और संकेतों को प्रभावित करते हैं। बचपन में कुछ कठिन अनुभव जैसे बुलिंग, लगातार चिढ़ाया जाना या किसी प्रकार का मानसिक आघात यानी ट्रॉमा भी आगे चलकर पैरानोइया की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक रहने वाला तनाव भी किसी व्यक्ति की सोच और भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। दूसरों पर भरोसा ना कर पाना। व्यक्ति को हमेशा शक बना रहता है, उसे लगता है कि लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाना, सामान्य मजाक, सुझाव या टिप्पणी भी व्यक्ति को अपने अपमान जैसी लग सकती है। हर बात का नकारात्मक अर्थ निकालना। व्यक्ति को महसूस हो सकता है कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, वह दूसरों की बातों का गलत अर्थ निकालने लगता है और बिना पर्याप्त आधार के साजिश जैसी बातों पर विश्वास कर सकता है। लोगों से दूरी बनाना। कई बार व्यक्ति बातचीत से बचने लगता है और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि ये लक्षण बार बार दिखाई दें और व्यक्ति की पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने लगें, तो विशेषज्ञ की मदद लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पैरानोइया एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। और अच्छी बात यह है कि समय रहते इसका इलाज संभव है। इलाज में लगने वाला समय व्यक्ति की स्थिति और लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर करता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य है। अपने मन की बातों को दबाने के बजाय भरोसेमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों या विशेषज्ञों से साझा करें। मेडिटेशन, तनाव प्रबंधन और स्वस्थ संवाद भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, हर शक सच नहीं होता और हर मजाक अपमान नहीं होता। समझदारी इसी में है कि हम अपने विचारों को पहचानें और ज़रूरत पड़ने पर सही मदद लेने से ना हिचकिचाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसी जगह जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ज़रा सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा डस्टबिन दिखे जिसे एक दिन, एक साल या 100 साल नहीं बल्कि पूरे 1,00,000 साल तक खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, सुनकर हैरानी हुई ना। तो दोस्तों, दुनिया का पहला ऐसा न्यूक्लियर डस्टबिन तैयार होने जा रहा है जिसमें परमाणु कचरे को सुरक्षित रखकर लगभग 1,00,000 वर्षों के लिए सील कर दिया जाएगा। यह अनोखी परियोजना दक्षिण पश्चिम फिनलैंड के यूराजोकी के जंगलों में बनाई गई है। खास बात यह है कि यह डस्टबिन ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि 433 मीटर की गहराई में स्थित है। जी हाँ, धरती की सतह से सैकड़ों मीटर नीचे। वैज्ञानिकों ने यहाँ अरबों वर्ष पुरानी चट्टानों के बीच सुरंगें बनाकर एक सुरक्षित रास्ता तैयार किया है जहाँ परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले रेडियो एक्टिव कचरे को दफनाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर यह परमाणु कचरा आता कहाँ से है। दोस्तों, हर परमाणु बिजली संयंत्र से ऐसा कचरा निकलता है जो हजारों वर्षों तक रेडियो एक्टिव बना रहता है। जब पिछली सदी के 6वें दशक में परमाणु संयंत्रों की शुरुआत हुई थी, तभी से दुनिया के कई देश इस चुनौती का समाधान ढूंढ रहे हैं कि इस खतरनाक कचरे को सुरक्षित रखने के तरीके कहां से आए। अब तक ज़्यादातर देशों में इस कचरे को अस्थायी रूप से बड़े बड़े पानी के कुंडों में ठंडा होने के लिए रखा जाता रहा है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी, स्थायी समाधान नहीं। और अब फिनलैंड इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। 1.9 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों में सुरंगें बनाकर तैयार किया गया यह प्रोजेक्ट, जिसका नाम है ऑन कालो, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडारण केंद्र बनने जा रहा है। फिनलैंड की परमाणु सुरक्षा एजेंसी इसी महीने इसे अंतिम मंजूरी देने वाली है। इसके बाद इसके संचालन का लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। परमाणु संयंत्र संचालित करने वाली कंपनी TVO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिलिप बॉर्डियर के अनुसार उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में यहां काम शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इतने खतरनाक कचरे को आखिर सुरक्षित कैसे रखा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़मीन के ऊपर परमाणु कचरे की छड़ों को तांबे के मोटे और जंगरोधी डिब्बों में बंद किया जाएगा। फिर इन डिब्बों को 433 मीटर की गहराई तक ले जाकर सुरंग के फर्श में बने विशेष छेदों में रखा जाएगा। इसके बाद उन छेदों को बेंटोनाइट नामक चिकनी मिट्टी से भर दिया जाएगा। बेंटोनाइट एक प्राकृतिक खनिज है जो गीला होने पर फूल जाता है और एक मजबूत प्राकृतिक सील का काम करता है, यानी सुरक्षा की कई परतें एक साथ। इस डस्टबिन में लगभग 65,000 टन यूरेनियम कचरा रखने की क्षमता होगी। ये मात्रा फिनलैंड के

500 परमाणु रिएक्टरों से निकलने वाले कचरे को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी समय। तब तक ले दीजिए इजाज़त मुझे, आपकी रेडियो होस्टिंग दोस्त कनिका को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम भारती।

क्रम भर्ती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई ने प्रभु भाई की घनी घनी राम राम भाई। आज चर्चा करेंगे अनार की उन्नत बागवानी। राजस्थान में फल उत्पादन के अंतर्गत अनार एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखे। राजस्थान में अनार की खेती के लिए बाड़मेर, जालौर, जयपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, जोधपुर और टोंक प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अनार की खेती में अधिक सफलता मिलने के कारण राज्य के किसानों का रुझान इसकी ओर बढ़ता ही जा रहा है। अनार के फल में विटामिन ए, सी एवं ई और खनिज लवण जैसे फास्फोरस, कैल्शियम और एवं पोटेशियम आदि की मात्रा अधिक होने के कारण यह फल स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। अनार के फलों का उपयोग ताजे फल, जूस एवं फल प्रसंस्करण उपयोगों में किया जाता है। इसकी जलवायु और मिट्टी की बात करें तो अनार को मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। अनार के पौधों को लवणीय और क्षारीय भूमि में भी आसानी से उगाया जाता है। अनार की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता है। अनार की फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त माना जाता है। अनार के फल में फल फटना एक आम बात है, जिसका मुख्य कारण मृदा और वायुमंडल में उपस्थित नमी व तापमान में अधिक परिवर्तन पाया जाता है। अनार के फल प्रवर्धन के लिए सख्त काष्ठ कलम विधि को व्यावसायिक स्तर पर अपनाया जाता है। इसके साथ ही अनार का प्रवर्धन बीजों के द्वारा भी किया जाता है। अनार के पौधों में कलम लगाने का सही समय फरवरी माह को माना जाता है। कलम से तैयार पौधों को बगीचे में जुलाई माह में लगाना आवश्यक है। इसकी उन्नत किस्में हैं, जालौर सीडलेस किस्म का नाम है, ये सूखा सहनशील और क्षारीय भूमि में उगाई जाती है। जो दूसरी किस्म है जोधपुर रेड, फल फटने की समस्या सबसे अधिक यह राजस्थान की उत्तम किस्म मानी जाती है। अगली किस्म है भगवा, फल का लाल रंग होता है, यह निर्यात के लिए उत्तम किस्म मानी जाती है। अगला है अरक्ता किस्म, यह प्रसंस्करण के लिए सर्वोत्तम किस्म है। अगली है उत्तम किस्म मृदुला किस्म के, इस किस्म के फलों का रंग गहरा लाल होता है। अनार की कलम विधि द्वारा पौधे तैयार पौधों के बरसात के मौसम में लगाया जाता है। अनार के लिए बगीचे में 75x75x75 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे मई माह में खोल लिए जाते हैं। बगीचे में अनार लगाने के लिए पौधे की पौध दूरी 5 से 5 मीटर रखी जाती है। अनार के पौधे बगीचे में लगाते समय प्रति गड्ढा 10 किलोमीटर गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटास, 2 किलो वर्मी कंपोस्ट के हिसाब से डालकर भर देना चाहिए। अनार के पौधों को उचित बढ़वार एवं विकास के लिए समय समय पर

0: खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। बगीचे की पौधों में 10 किलो गोबर खाद, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 120 ग्राम फास्फोरस तथा 100 ग्राम पोटास की मात्रा चाहिए। प्रतिवर्ष खाद या उर्वरकों की मात्रा को बढ़ाते रहना चाहिए। पौधे की समय से बेपर काट छाट करते रहना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को पौधे से हटा देने चाहिए। अगला है, इसके राजस्थान में अनार के पौधों में फलन या बहार वर्ष में 3 बार आती है। अनार के अंबे बहार के फूल जनवरी फरवरी में आते हैं तथा इनके फलों की तुड़ाई जुलाई अगस्त माह में की जाती है। अनार की मृग बहार में फूल आने का समय जून जुलाई का महीना होता है। इनकी सिंचाई के लिए अनार के बगीचे में पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। सर्दी के मौसम में 10 दिन के अंतराल पर और गर्मी के मौसम में 5-7 दिन के अंतराल पर एवं बरसात के मौसम में यदि बरसात नहीं हो तो 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। कीटों के प्रवर्धन की बात करें तो अनार में तितली, अनार की तितली या अनार का मुख्य विनाशकारी कीट होता है। इस कीट की मादा द्वारा अनार के फूलों पर अंडे दिए जाते हैं। इन अंडों से लटे निकलकर पौधे को विकसित फलों से में घुसकर फलों को अंदर से अंदर ही अंदर खाती रहती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए फलों को बटर पेपर से ढक देना चाहिए तथा कार्बेरिल दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। छाल भक्षक कीट, यह कीट पौधे की छाल को खाता है। यह कीट डाली के अंदर छेद करके घुस जाता है जिससे शाखा कमजोर रह जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सूखी रोगग्रस्त शाखाओं को काट देना चाहिए तथा कीट के द्वारा बनाई गई सुरंग में कैरोसिन युक्त रुई का फुआ बनाकर डाल देते हैं और छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं। अगला कीट है मिलीबग। इस कीट का प्रकोप पौधे पर नवंबर दिसंबर महीने में सर्वाधिक होता है। इस कीट की शिशु पौधे के तने को सहारे ऊपर चढ़कर शाखाओं में पत्तियों का रस चूसते हैं। इसको रोकने के लिए अगस्त माह में थांवले के आसपास की मिट्टी को बदल देना चाहिए ताकि इस कीट के अंडे बाहर आकर नष्ट हो जाएं। इन कीटों को पौधों के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए एल्काथियन की 30-40 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की जमीन में 60 सेंटीमीटर ऊपर तक तनों के चारों ओर बांध देते हैं तथा इसके निचले हिस्से पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ग्रीस का लेप कर देते हैं। दीमक, जब अनार के पौधों को बगीचों में स्थानांतरित किया जाता है उस समय इस कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए फल पौधे में खाद एवं उर्वरक देते समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का ही उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा 50 ग्राम कार्बेनिल को छिड़काव प्रति गड्ढे के हिसाब से करें। फल सड़न रोग, इस रोग का प्रकोप बरसात के समय साथ शुरू होता है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए मैनकाजोब या कार्बेंडिजिम के 2 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर धब्बे दिखाई देने के बाद करने चाहिए। फलों की और तुड़ाई एवं उपज, जब फलों का रंग इनका हल्का पीला या लाल दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि फल पकने की स्थिति में आ गए हैं। फूल आने के लगभग 5-6 महीने बाद फल पक जाते हैं। एक पूर्ण विकसित फल वृक्ष के लगभग 100 से 120 फल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम अनार की उन्नत बागवानी कर सकते हैं। और भाइयों, अब सुनवाते हैं आपको वार्ता, और वार्ता है प्राकृतिक खेती। इसके श्री नरेश पाराशर हैं, सहायक कृषि अधिकारी खेरली। तो भाई ये जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती की, सुनिए।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती क्या होती है, कैसे प्राकृतिक खेती की जाती है और किस तरह से हम प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खाद और कीटनाशक बनाकर हम खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। आप प्राकृतिक खेती को यदि सरल और स्पष्ट शब्दों में समझें तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ से प्रकृति से लेना और दूसरी तरफ प्रकृति को देना, यही प्राकृतिक खेती है। यानी प्राकृतिक खेती खेती की वो पद्धति है, वो प्रणाली है जिसमें रासायनिक खाद, दवाइयाँ जैसे कीटनाशक, खरपतवार नाशी आदि का हम खेती में इस्तेमाल पर बहिष्कार करते हैं, उनको वर्जित करते हैं। एवं प्रकृति से प्राप्त चीज़ें जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, शाखाएँ हैं या जो भी फसल अवशेष हैं या गाय का गोबर है, मतलब यहाँ हम गाय से संदर्भ रख रहे हैं, देसी गाय से, तो देसी गाय का गोबर हुआ, गौमूत्र, दही, छाछ, घी, दाल का आटा जिसमें बेसन भी कह सकते हैं, गुड़ हुआ, मिट्टी, मिट्टी मतलब शुद्ध मिट्टी जो पेड़ पौधे या फिर जो आप कह सकते

हैं कि जो मेड़ वाली मिट्टी होती है या जो बड़ या बरगद और पीपल के नीचे की जो मिट्टी होती है, जहाँ पर खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, रासायनिक खाद का, इन सब प्रकृति के अवयवों को काम में लेके हम खाद बनाते हैं और उसका इस्तेमाल हम खेती में करते हैं। यही प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती एक प्रकार से संपोषणीय खेती है, जहाँ उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती में भूमि, जल, पारिस्थितिक पर्यावरण में आपसी सामंजस्य बैठाकर खेती की जाती है, जिससे कि हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति जो है वो बढ़ सके, साथ ही हमारी जैव विविधता जो है उसको भी बल मिलता है। प्राकृतिक खेती में हम देसी स्थानीय फसलों और किस्मों का बहुस्तरीय एवं मिश्रित फसल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती करना क्यों जरूरी है और रासायनिक खेती क्यों नहीं। ये एक प्रश्न जो है वो सभी किसान भाइयों के मस्तिष्क में आता है कि रासायनिक खेती को क्यों हमें छोड़ना है और क्यों हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना है। तो उसके कुछ बिंदु हैं। जैसे पहली जो बात हम पहले कर चुके हैं वो है कि रासायनिक खेती जो होती है वो संपोषणीय नहीं है, प्राकृतिक खेती जो है वो संपोषणीय है। संपोषणीय या सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि इसके जो प्रभाव हैं वो दूर तक रहते हैं। किसके? रासायनिक खेती के, जो हमारे सेहत पे, हमारे स्वास्थ्य पे उनका असर बुरा होता है। रासायनिक खेती संपोषणीय नहीं है, जबकि प्राकृतिक खेती जो है वो संपोषणीय है, क्योंकि रासायनिक खेती जो है उसका जो भविष्य है वो निर्धारित नहीं है। यानी आज हम जितनी मात्रा में खाद डाल रहे हैं, हो सकता है कि हम खाद की मात्रा को बढ़ा दें, डबल कर दें, डबल करने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि हमें उत्पादन ज़्यादा मिले। तो इसलिए ये सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं है, इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण जो है वो ये है कि रासायनिक खेती से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो बुरा असर पड़ रहा है। कई तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, जैसे कैंसर जैसी जो भयानक बीमारियां हैं वो भी हमें ग्रसित कर रही हैं, इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाना बहुत जरूरी है। तीसरा बिंदु ये है कि रासायनिक खेती से मिट्टी, जल और पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहे हैं, साथ ही रासायनिक खेती में रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी के ऊपर एक सख्त लेयर बन जाती है, सख्त परत बन जाती है, जिससे कि बीज अंकुरण नहीं होता है, साथ ही मिट्टी में पानी का रिसाव भी जो है वो कम होता है, जिससे हमारा जो भूमिगत जल सिस्टम है या भूमिगत जल तंत्र है वो भी डिस्टर्ब होता है और हमें सिंचाई में अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है कि रासायनिक खेती में लागत ज्यादा आती है किसान की और प्राकृतिक खेती में लागत जो है वो कम होती है, और साथ ही हम जहर मुक्त खेती भी प्राकृतिक खेती में कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ में हमें ये और समझने की आवश्यकता है कि हमारी जो मिट्टी है उसकी भी एक अपनी क्षमता है किसी भी चीज़ को पालने की। जैसे आप ये कह सकते हैं कि इतने सारे जंगल जो हैं, जहाँ आप देखते हैं कि इतने पेड़ पौधे हैं, वो बिल्कुल हरे भरे, एकदम हष्ट पुष्ट और मजबूती से खड़े रहते हैं, वहाँ तो हम कोई खाद जाके नहीं डाल रहे हैं, कोई दवाई हम स्प्रे नहीं कर रहे हैं बीमारी और रोगों के नियंत्रण के लिए, फिर भी वो पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूती से खड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि प्रकृति में खुद के अंदर ही वो क्षमता है कि वो पूरी तरह से पोषक गुणों से परिपूर्ण है, जो वहाँ जंगल में उपस्थित पेड़ पौधों को प्रदान करती है। यही जो प्रकृति के अवयव हैं या प्रकृति की ताकत है, वो हम प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल करके हमारी खेती को हम जो है बढ़ा सकते हैं, उसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, साथ ही गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये रासायनिक जो खाद दवाइयाँ हैं वो किसानों की मदद के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो वैज्ञानिक तरीके से हमारा किसान नहीं करता है, इसलिए ये हमारे लिए जहर बन जाते हैं। इसलिए जहर मुक्त खेती का जो विकल्प है वो केवल और केवल प्राकृतिक खेती ही है। अब किसान भाइयों, हम जानेंगे कि प्राकृतिक खेती में हम कैसे प्राकृतिक खाद और प्राकृतिक रूप से कीटनाशक बनाते हैं। उनमें से पहली जो बिंदु आता है वो बीजामृत का है। तो बीजामृत क्या है और इसको कैसे बनाते हैं और कैसे इसको उपयोग में लिया जाता है, वो हम एक एक करके जानेंगे। बीजामृत जो है वो बीज संस्कार की विधि है, जहां हम फसलों के जो बीज हैं उनको उपचारित करते हैं और उसके बाद उनको उगाने के काम में लेते हैं। तो किसान भाइयों, आप एक पेन कॉपी लेके आप अपने किसी रजिस्टर में इसको नोट भी कर सकते हैं, जिससे आगे आपको ये चीज काम भी आए। तो बीजामृत के लिए क्या क्या सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, जिनको आप एक एक करके नोट भी कर सकते हैं। पहला है देसी गाय का गोबर। यदि आप गोबर इस्तेमाल करते हैं तो देसी गाय का लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। देसी गाय का गोबर आपको लेना है 5 किलोग्राम, गौमूत्र लेना है 5 लीटर, चूना लेना है आपको 50 से 100 ग्राम, और चूना में आपको ध्यान रखना है कि या तो आप खाने वाला चूना इस्तेमाल करेंगे या भुजा हुआ चूना इस्तेमाल करेंगे। एक मिट्टी लेनी है, मिट्टी आपको लेनी है जो बड़ या पीपल के नीचे की जो मिट्टी है, जो रासायनिक खाद से बिल्कुल दूर है या जहाँ पर किसी तरह के खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, रासायनिक खाद का,
वहाँ की मिट्टी लेनी है, शुद्ध मिट्टी लेनी है, उसकी मात्रा लेनी है आपको

किलोग्राम पानी लेना है आपको 20 लीटर। ये सारी सामग्री जो है वो आप याद रखें। 100 किलोग्राम बीज संस्कार के लिए आवश्यक है, यानी आपको 100 किलोग्राम बीज को उपचारित करना है, बीज संस्कार करना है, उसके लिए इतनी सामग्री आप लेंगे। साथ ही आप बीज की मात्रा के हिसाब से जो है वो इनकी मात्रा को घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब बीजामृत बनाते कैसे हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप गाय के गोबर को आप सूती कपड़े की पोटली में बांधेंगे, उसको आप रात में पानी में भिगोकर रख दें और 12 घंटे से 16 घंटे तक उसको छोड़ दें। उसके बाद आप 50 ग्राम जो चूना है, भुजा हुआ चूना या फिर जो खाने वाला चूना है, उसको 1 लीटर पानी में आप उसको अच्छी तरह से मिला लें। अगले दिन पोटली में गोबर को 3 बार पानी से इस प्रकार निचोड़ लें कि गोबर का जो पूरा सत है वो पानी में अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद इसमें उपजाऊ मिट्टी, गौमूत्र और चूना ये मिलाकर और इसको पूरी तरह से 20 लीटर में बना लें। तो सामग्री को आपस में मिलाकर आप 24 से 48 घंटे के बाद जो है उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से आपका 2 या 3 दिन के बाद में बीजामृत बनके तैयार हो जाता है। इस अवधि में 2 या 3 बार आप लकड़ी के सहारे से इसको अच्छी तरह से घुमा लें और उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करें। अब इसको उपयोग कैसे करते हैं, इसको उपयोग करने का जो तरीका है बहुत ही सरल है। बुवाई करने से पूर्व जो है आप बीज लें और बीज को बोरी के ऊपर जो है बिछा लें, उसके बाद बीजामृत को छिड़क लें अच्छी तरह से और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मिला लें। उसके बाद उसको छाया में सुखा दें और छाया में सुखाने के बाद जो है आप बीजामृत को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है जीवामृत। तो जीवामृत क्या होता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, आइए इसको भी जान लेते हैं। पहले जीवामृत होता क्या है, यदि आपको सरल और स्पष्ट भाषा में बात करें तो जीवामृत खेत में सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है। और सूक्ष्म जीव जो है या जीवाणु जो है वो हमारी खेती के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी अवशेष मिट्टी में जाता है, खेती में जाता है, उसको जीवाणु ही अवगठित करते हैं जिससे कि वो पौधों को प्राप्त हो सके। अब जीवामृत बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करनी है, तो आप एक एक करके जो है इनको भी नोट कर लें। जैसे कि आप पानी लें 200 लीटर, गाय का ताजा गोबर लें 10 किलोग्राम, गौमूत्र 10 लीटर, गुड़ 1 से 2 किलोग्राम ले सकते हैं, बेसन लेना है आपको 1 से 2 किलोग्राम और मेड़ की मिट्टी लेनी है शुद्ध, कम से कम 1 मुट्ठी जिसे कह सकते हैं 50 से 100 ग्राम। जीवामृत बनाने की विधि जो है वो भी आप जान लें किस तरह से आपको जीवामृत बनाना है। आप जो जितनी सामग्री आपको लिखाई है इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स करके और एक केन में या ड्रम में जो कि 200 लीटर का होता है उसमें आप मिला लें अच्छी तरह से और लकड़ी की सहायता से पूरी तरह से मिक्स कर लें। जब ये सारी सामग्रियां मिक्स हो जाएं उसके बाद उस ड्रम को सूती कपड़े या जूट की बोरी से ढक दें जिससे कि उसमें वायु संचार बना रहे। और सुबह शाम आपको करना क्या है, इसको 2 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है और इस तरह से ये 2 या 3 दिन में ये जीवामृत जो है वो बनके तैयार हो जाता है। अच्छी बात यह है किसान भाइयों की जीवामृत की मात्रा जो है कम लगती है। कम लगती है का मतलब ये है कि आप 15 लीटर यदि पानी में आपको जीवामृत काम में लेना है तो 1 से 2 लीटर जीवामृत से आप काम चला सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि यदि 21 लीटर जीवामृत को आप 100 लीटर पानी में घोल लें और उसके बाद 1 एकड़ में जो फसल लगी है उसमें आप छिड़क लें। 21 दिन में इसी विधि को दोहराएं, यानी 21 दिन में इस स्प्रे को वापस आपको खेती में करना है। इस तरह से आप एक फसल में 21 दिन के अंतराल में 3 से 4 बार जो है जीवामृत डाल सकते हैं। और ये जीवामृत जो आपने बना लिया एक बार, इसको कोशिश करें कि 1 सप्ताह के अंदर आप इस्तेमाल कर लें जिससे कि इसकी ताकत जो है वो हमारी मिट्टी को मिल सके। तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है घनजीवामृत। घनजीवामृत क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं, कैसे उपयोग में लेते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। तो घनजीवामृत एक तरह से खेत में खाद की पूर्ति करता है, यानी एक तरह से ये प्राकृतिक खाद का काम करता है। सामग्री जो है, जो किसान भाइयों सामग्री आपने जीवामृत बनाने के लिए थी वो ही सामग्री जो है आप घनजीवामृत में काम में लेंगे, यानी वही गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, मेड़ की मिट्टी, यही आपको काम में लेनी है। बनाते कैसे, बनाने की विधि में आप बात करेंगे तो आप इसको ताजा गोबर से भी इस्तेमाल कर सक बना सकते हैं। घनजीवामृत बनाने के लिए आप ताजा गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सूखे गोबर से भी इसको बना सकते हैं। जो विधि सबसे ज्यादा काम में ली जाती है वो है सूखे गोबर से। इसके लिए आपको क्या करना है, आप देसी गाय का ताजा गोबर जो है वो लें, 200 किलोग्राम 200 300 किलोग्राम ताजा गोबर लें, उसे छांव में सुखा लें, 7 से 10 दिन तक इसे सूखने दें और सूखने के बाद इसमें से 100 किलोग्राम गोबर जो है उसको अलग से लेके और फैला लें और इसके ऊपर 1 मुट्ठी मिट्टी भुरक दें। फिर इसके ऊपर 1 किलोग्राम बेसन भुरक दें,

0: इसके पश्चात 1 किलोग्राम गुड़ को 5 लीटर गौमूत्र में अच्छे से घोल लें। अच्छे से घुलने के बाद इस घोल को भी इस सूखे गोबर के ऊपर छिड़क दें और फिर इस गोबर में अच्छे से इसको मिला लें। आप मिलाने के लिए फावड़ा या खुरपी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको 5 से 7 दिन तक इस तरह से ही रहने दें। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए, सूखने के बाद जो इसमें ढेले बन जाएंगे उन्हें आप लकड़ी से कूट कर उसे बारीक कर लें और एक जगह इकट्ठा कर लें। ये हुई घनजीवामृत, बीजामृत और जीवामृत की बात। अब हमें कैसे जैविक रूप से या प्राकृतिक रूप से कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें अपने घर पर बना सकते हैं। उनमें से जो मुख्य मुख्य जो कीटनाशक हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें से एक है नीमास्त्र, ऐसे ही अग्निअस्त्रम है और ऐसे ही ब्रह्मास्त्र। ये क्या है नीमास्त्र? यानी आपको नीमास्त्र जैसे शब्द से ही पता लग रहा है, आपको इस कीटनाशक को बनाने के लिए और नीम की पत्तियां, निमोली आपको इस्तेमाल करनी है। कैसे बनाना है? आप 200 लीटर पानी ले लें, 10 लीटर गौमूत्र लें और इसमें 2 किलोग्राम गाय का ताजा गोबर मिला लें। अच्छी तरह से पानी के अंदर गौमूत्र और गोबर को मिला लें। आपको 10 से 15 किलोग्राम आपको नीम की छोटी छोटी टहनियां लेनी है जिसमें पत्तियां हों, उनको तोड़ लें अच्छे से और उनको तोड़कर छोटे छोटे में लेके आ जाएं और उसके बाद इनको मिक्स कर दें और इस मिक्सर को या इस घोल को 10 से 15 दिन तक आप रखें। उसके बाद इस घोल को बीच बीच में 2-3 बार जो है वही घड़ी की सुई की दिशा में आप लकड़ी की सहायता से घुमावें और इस पूरे मिक्सर को आप या इस पूरे घोल को आपको 6 महीने के अंदर आपको इस्तेमाल कर लेना है। तो ये जो कीटनाशक है वो आप ये कह सकते हैं कि जो चूसने वाले कीट हैं, इल्लियाँ हैं या फिर सुंडी हैं, इनको वो पूरी तरह से खत्म कर देगा। नीमास्त्र के की तरह ही एक अग्निअस्त्रम भी होता है। अग्निअस्त्रम कैसे बनाना है? अग्निअस्त्रम या अग्नि मतलब आँच, यानी आपको उबालना है इन सब चीज़ों को और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें डालनी है। जैसे आपको 10 लीटर गौमूत्र लेना है, उस गौमूत्र के अंदर आपको 5 किलोग्राम नीम की पत्तियां मिलानी है। आप 1/2 किलोग्राम हरी मिर्च लें, 1/2 किलोग्राम लहसुन लें और 1 से 2 किलोग्राम तंबाकू की पत्तियां भी लें। इन सब को कूट के अच्छे से एक पात्र में ले सकते हैं और उस एक पात्र में रख के और इनको उसमें पानी डाल के और चूल्हे पर उसको एक बर्तन में डाल के अच्छे से उबालना है। इनको उबलने के बाद इसको ठंडा करना है और उसको 2-3 दिन के लिए सड़ने के लिए छोड़ देना है। 2-3 दिन के बाद आप इस अग्निअस्त्रम को कीटनाशक की तरह स्प्रे अपनी फसलों में कर सकते हैं। मात्रा आपको क्या इस्तेमाल करनी है? आप 20 से 25 लीटर अग्निअस्त्रम जो है वो 100 लीटर पानी में मिलाकर आप अपनी फसलों में छिड़क सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्रम होता है जिसमें आप नीम की पत्तियां और तंबाकू की पत्तियों के अलावा धतूरा, आक, अरंडी, करेला, करंज, अमरूद आदि की पत्तियों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। और ये अग्निअस्त्रम भी आपको जैसे पूर्व में नीमास्त्र और अग्निअस्त्रम आपको बनाना सिखाया था, इसी तरह से ही आप इसको बना सकते हैं। ये सभी जो कीटनाशक हैं जो जैविक रूप से या प्राकृतिक रूप से आपने तैयार किए हैं, ये सभी तरह के जो कीट हैं, चूसक कीट हैं या फल भेदक कीट हैं या फली भेदक कीट हैं, उनके नियंत्रण के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही किसान भाइयों, आप नीम और हरी मिर्च, लहसुन, इनके सत का भी आप इस्तेमाल जो है अपने पौधों पर कीटों के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। अंत में मैं हमारे किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि उच्च गुणवत्ता वाली, ज़्यादा उपज की, शून्य लागत की, जहर मुक्त, कर्ज मुक्त, चिंता मुक्त, कष्ट मुक्त और रोग कीट मुक्त यदि आपको खेती करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती को अपनाएं, क्योंकि ये खेती जो है वो हमारे किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाती है, सुख समृद्ध और स्वावलंबी बनाती है। साथ ही ये जो कृषि पद्धति है यानी प्राकृतिक खेती की जो कृषि पद्धति है वो एक तरह से प्रकृति, ज्ञान, विज्ञान, अहिंसा और अध्यात्म पर आधारित शाश्वत कृषि पद्धति है। अतः हमारे देश के हर किसान को ये प्राकृतिक खेती को स्वीकार करना चाहिए और जो किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं वो भी प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक और जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल अपनी खेती में आवश्यक रूप से कर सकते हैं। और प्राकृतिक खेती के बारे में या प्राकृतिक खाद कैसे बनाते हैं, कैसे प्राकृतिक कीटनाशक तैयार करते हैं, इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या किसान सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और 111 डिजिट का टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर बताता हूँ, 1800180551। ये किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कभी भी बात कर सकते हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में जान सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।
1: तो भाइयों, अभी सुने आपने प्राकृतिक खेती के बारे में और अब भाइयों को करवाते मनोरंजन और ये लोकगीत सुनिए अनुराधा पोडवाल का गाया हुआ।

अभी भाई यह लोकगीत सुने और अब बात करते हैं जानकारी में। फायदेमंद है सहजन की खेती। मोरिगा वाली फेरा अर्थात सहजन प्राचीन काल से ही उगाए जाने वाला वृक्ष है। दक्षिण भारत में इसका उपयोग अत्यधिक है, यहाँ इसे सहजन, मुनगा या सहजन के नाम से भी जाना जाता है। इसे 46 तरह से एंटी ऑक्सीडेंट, 92 तरह की मल्टीविटामिन, 36 तरह की दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो अम्ल होते हैं। सहजन की पत्ती, छाल, जड़, लकड़ी का उपयोग भोजन, चारा, औषधि, ईंधन, खाद एवं मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में होता है। सहजन की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप और उप हिमालयन इलाकों से हुई है। इसकी 18 प्रजातियां अरबी ये भारत की उप हिमालयन पर्वतमाला, मेडागास्कर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, श्रीलंका में पाई जाती है। सहजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं प्रोटीन, रेशा, सिलिका, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, लोहा, ये सारे के सारे मिल जाते हैं। औषधीय गुण, सहजन बहुपयोगी पौधा है। इसके सभी भागों का उपयोग भोजन, दवा, औषधीय कार्यों आदि में किया जाता है। सहजन में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व व विटामिन विद्यमान होते हैं, यह अनेक रोगों के उपचार में काम आता है। इसकी फली से तैयार अचार और चटनी कई रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। इसका प्रयोग सांभर में डालने के लिए किया जाता है। इसके फूलों एवं फलियों की सब्जी बनाई जाती है। सहजन के बीज से तेल निकाला जाता है। इसकी छाल, पत्ती, गोंद, जड़ आदि से दवाएं तैयार की जाती है। सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन अधिक पाया जाता है। इसकी फलियां व पत्तियां उदर शूल में नेत्रा रोग, मोच, साइटिका, गठिया में उपयोगी है। सहजन की जड़ दमा, जलाधर, पथरी, पलिया रोग के लिए उपयोगी है। इसकी छाल को शहद में मिलाकर पीने से वात या कफ रोग दूर होता है। सहजन की पत्ती की लुगदी सरसों के तेल में पकाकर मोच में लगाने से शीघ्र आराम मिलता है। इसकी सब्जी खाने से गुर्दे या मूत्राशय की पथरी कटकर निकल सकती है। इसके पत्तों के रस के प्रयोग से पेट के कीड़े खत्म होते हैं।

और उल्टी दस्त भी रुकता है। तो इतने प्रकार के सह फायदे हैं सहजन की खेती से। और अब बात करते हैं भाई अलवर मंडी के भावों की। तो आज अलवर में गेहूं का भाव रहा 2450 से 2575 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का भाव रहा 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का भाव रहा भाई 7000 से 7700 रुपये प्रति क्विंटल, चने का भाव रहा 5400 से 5700 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरे का भाव रहा 1850 से 2050 रुपये प्रति क्विंटल, ग्वार का भाव रहा 3800 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल। और अब बात करें मौसम की, तो आज मौसम अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री नीरज भगत जी हैं, घड़ी कह रही हैं अब कार्यक्रम हो गया पूरा। लो भाइयों से इजाजत, जय जवान जय किसान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25% पर यथावत रखा है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत बाहरी झटकों का न्यूनतम प्रभाव के साथ सामना करने की स्थिति में है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। मौद्रिक नीति समिति आगे के फैसलों में आंकड़ों, आपूर्ति दबावों और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखेगी। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों और अन्य पात्र विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी बाजारों में निवेश के अवसरों को भी बढ़ाया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और इस तरह की कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा परिसर में निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा के समक्ष उन्होंने नामांकन पेश किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने श्री डांगी की उम्मीदवारी को सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया है। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश

0: काश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये स्थान आर्द्र भूमि पक्षियों की विविधता से समृद्ध है, साथ ही कई तरह के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आशियाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरित भविष्य के लिए सहायक है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को इकोलॉजिकल संरक्षण की दिशा में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों आवश्यक हैं।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, तीनों महत्वपूर्ण होती है। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है, और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और प्रकृति का संरक्षण करने की अपील की है। आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री शर्मा ने सभी नागरिकों से पानी बिजली की बचत करने और राज्य को हरित तथा स्वच्छ बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस साल राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने के संदेश को लेकर कार्यक्रम रखे गए। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की ओर से पौधरोपण और वितरण किया गया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों और आम लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं रखी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 3 दिन की देरी के बाद कल केरलम से मॉनसून का प्रवेश हुआ। इस बीच राज्य में भी प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल शाम से ही कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून के राजस्थान पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने 7 जून तक कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। मौसम में आए बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, बीते 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में गरज और चमक के साथ तेज बरसात हुई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 7.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ से कुछ जगह हादसों की भी खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज राजस्थान और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीमों ने जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और साइबर अपराध से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। ईडी इन ठगों के वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग 1000 बुजुर्गों को रेल के जरिए सोमनाथ यात्रा पर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मीडिया से बातचीत में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए

0: सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। उसकी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर जिले के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प कर यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि स्टेशन के हाईटेक होने से पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडल ने इन विज्ञापनों को फर्जी बताते हुए कहा है कि इनके जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी के प्रयास किए जा सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा है कि भारतीय रेलवे सभी भर्तियां निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करता है, निजी माध्यमों से चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। प्रदेश में इबोला वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। युगांडा से राजस्थान आई एक विदेशी महिला में इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं को विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल महिला में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। महिला का सैंपल जांच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज से ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। वन विभाग की ओर से आज लोगों को पौधे वितरित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी आज संपन्न हुआ। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए गए। अभियान के तहत 577 जल संरचनाओं की सफाई की गई। वहीं 37 की मरम्मत और पुनर्जीवन के काम शुरू किए गए। 237 ग्राम सभाओं सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कोटपुतली नगर परिषद इन दिनों PM स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेले लगाया गया है। 30 जून तक चलने वाले इस मेले में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी संचालकों को

0: योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही छोटे व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पुलिस की ओर से अवैध मोडिफाइड वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि इस दौरान वाहनों की बॉडी में परिवर्तन कर प्रेशन हॉर्न और अवैध रूप से लाल नीली बत्तियां लगाने तथा नंबर प्लेट में बदलाव करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले में पड़ रही तेज गर्मी के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने को कहा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय महिला समाधान समिति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा केंद्र की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बनाए गए जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की भी बैठक ली। पावटा में नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 3,29,00,000 रुपए की लागत आएगी। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सर्वे और मकान गणना का काम लगातार जारी है। प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और आवश्यक जानकारी का संकलन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से इस काम में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। बीते दिनों राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई गई। साथ ही संध्या चौपाल लगाकर आम जन को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन दिनों जिले के मंदिरों, मठों और निजी संग्रहों में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मिशन के जिला नोडल अधिकारी ने बीते दिनों मिशन के लिए बनाई गई क्रियान्वयन समिति के साथ बैठक की। उन्होंने समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों में जाकर पांडुलिपियों के सर्वेक्षण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता देते हुए डोर टू डोर सर्वे करने को कहा। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से बहरोड में एमएसएमई प्रोत्साहन जागरूकता कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। इससे पहले नीमराणा, घिलोट और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को भी ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। इसके साथ ही कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किनो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माय पौधा रोपण, वितरण और जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। हरियाली बधावन और आबो हवा ने बचावन रो संदेश दियो चियो। प्रदेश माय चौमासाओं पहली री हलचल शुरू हुई। कई जिला माय आंधी बारिश रो दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापा मारिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे समाचार विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो है। मौद्रिक नीति समिति री समीक्षा बैठक में इनने 5.25% रा लेवल माथे राखण रो फैसलो करी चियो। मीटिंग में स्थायी जमा सुविधा री रेट 5% और सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक रेट 5.5% रा लेवल में थई राखण रो फैसलो करी चियो। चालू माली साल में लगातार दूजी दफा

0: હાજરી ખાસ દરામાં કોઈ બદલાવ ની કરી છો। આરબીઆઈ રા ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા આ જાણકારી દીની વ કહ્યો કે બેંક ચાલુ માલી સાલ સારું સકલ ઘરેલુ ઉત્પાદ જીડીપી માં બઢોતરી રી રેટ પહેલી રી 6.9% ઘટાર 6.6% કરણ રો ફેસલો કિન્નો। આરબીઆઈ अनिवासी भारतीयां भारतरा प्रवासी नागरिकां और दूजा पात्र विदेशी निवेशकां सारू इक्विटी बाजार माय निवेश रा मौका ही बधाया है। सरकारी दूजा देशां रा संस्थागत निवेशकां ने सरकारी शेयरां माथे भेवण वाला पूंजीगत फायदा माथे टैक्स माय छूट दीनी है। देश माय पॉलीमर आधारित नोट चलावण रा प्रस्ताव माथे विचार करियो जा रियो है। भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा बतायो कि देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं बैंकां री शाखावां और एटीएम माय नोटां री कमी री शिकायतां मिली ही। श्री मल्होत्रा बतायो कि बैंक कने जरूरी तादाद माय नकदी मौजूद है और इनरी कमी तुरंत पूरी कर दी जावेला। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा तहत राज्यों 3 सीटां माथे वेवण वाला चुनाव बाबत कांग्रेस रा उम्मीदवार नीरज डांगी आज पर्चो दाखिल कीनो। वह विधानसभा भवन में चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा सामी नाम पानो भरियो। ई बगत राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा में विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में कांग्रेस रा मुख्य सचेतक रफीक खान समेत कई आला नेता मौजूद हा। कांग्रेस नीरज डांगी री उम्मीदवारी ने पार्टी रा सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव रा प्रति भरोसा री निशानी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश माय बलिया रा जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल रे देश री 100वीं रामसर ठौड़ वेवन रा ऐलान माथे खुशी जताई है। माना संदेश माय श्री मोदी कहो के ओ जैव विविधता ने बचावण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखण सागे हरित भविष्य सारू मददगार है। सुरहा ताल माय भांत भांत रा प्रवासी और वठेरा परिंदा रो रहवास है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ई उपलब्धि ने पारिस्थितिकी बचावण ओड़ी खास बतायो है। वह कहो के पारिस्थितिकी संतुलन सारू वेटलैंड ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों जरूरी है।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूं, तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनताओं आबो हवारा मुजब जीवन रो तरीको अपनावण और धरती ने बचावण री अरज कीनी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके जयपुर माय राखी जाय कार्यक्रम माय श्री शर्मा जनताओं पानी बिजली री बचत करण सागे राज्य ने हरित और साफ सुथरो बनावण माय योगदान देवण री अपील कीनी। मुख्यमंत्री कहो के एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत ई साल प्रदेश माय 10 करोड़ पौधा रोपणु तय करी चियो है। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखर राज्य माय हरियाली बधावण और कुदरत ने बचावण रो संदेश देता थका कार्यक्रम राखी चिया। अलवर माय सशस्त्र सीमा बल री ओरू पौधा रोपी चिया और जनता ने पौधा बांटी चिया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाई माधोपुर समेत कई ठोड़ा विद्यार्थी और जनता पौधा रोपिया और पर्यावरण ने बचावण री सोगन लीनी। भरतपुर माय पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली जी। झुंझुनू माय पर्यावरण बचावण जुड़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम और होड़ा राखी जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और

फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। देश में चौमासारी बिरखा स्वरूप बन रहा हालात अनुकूल है। केरलम में चौमासारी बिरखा 3 दिन मोड़ी स्वरूफी राज्य में चौमासाओं पहले रही हलचल तेज वे की है। काल सिंजा हुई कई जिला में आंधी बारिश रो दौर चाल रो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता महीना रा पहला सप्ताह में राज्य में चौमासारी बिरखा स्वरूप बन रहा आसार है। ये बीच 7 जून ताई प्रदेश रा कई हल्का में आंधी बारिश री संभावना जताई ची है। आज राज्य रा 14 जिला में ऑरेंज और 8 जिला में येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम में आया बदलाव तेज गर्मी थोड़ी साता मिली है। हालांकि तेज अंधड़ रे कारण कठे कठे हादसा री खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ 2 जना री मौत वे की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी री ओर

0: आया बदलाव तेज गर्मी थोड़ी साता मिली है। हालांकि तेज अंधड़ रे कारण कठे कठे हादसा री खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा माए अंधड़ दो जना री मौत वे की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी री ओर आज राजस्थान और पंजाब माए साइबर अपराधा माए शामिल फेवन री शंका वाला रे खिलाफ 7 ठोड़ा छापा मारी चिया। ईडीरी टीमा जोधपुर नागौर और किशनगढ़ माए एक सागे करी जी कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माए मोबाइल फोन माए लगन वाली सिम और साइबर अपराध माए काम आवन री शंका वाला इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान पकड़िया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत करीब 1000 बुजुर्गों ने रेल रे जरिए सोमनाथ री यात्रा कराई जा रही है। इंसारू जयपुर कने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रेलगाड़ी ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत कहो के 6 दिन री ई यात्रा माए यात्रुआ सारू सगला सुविधा मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। पूरी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत बीकानेर कने लालगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रो करीब 85% काम पूरो वेक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के लगभग 20 करोड़ रुपया रा खर्च वठे नुआ सुविधा विकसित करी चिया है। श्री सुदर्शन बतायो के इन स्टेशन रे हाईटेक मेवणु सैर सपाटा वठेरा हाथरी कारीगरी रा काम और कारोबारी हलचल ने बढ़ावो मिलन सागे नौकरी धंधा रा मौका ही बधेला।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे रो कोटा मंडल रेलवे माय भर्ती रा सोशल मीडिया माथा चाल रिया फर्जी विज्ञापनाओं सावचेत रहन री राय दीनी है। मंडल रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन कहो कर रेलवे माय सगली भर्तियां ते नियमा रा तहत साफ कोई सागे करी जावे है और गैर सरकारी जरिया चयन री कोई प्रक्रिया नहीं वे है। प्रदेश में इबोला वायरस री शंका वाला एक मरीज रीठा पड़िया पछे स्वास्थ्य विभाग सावचेत वेक्यो है। अफ्रीकी देश युगांडा राजस्थान आई एक विदेशी महिला माए ई बीमारी मिलता जुलता लक्षण रीठा पड़िया पछे वाना जयपुर रा RUHS अस्पताल रा विशेष आइसोलेशन वार्ड माए भर्ती कराई ची है। RUHS अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता बतायो कि फिलहाल ये महिला माए इबोला संक्रमण री पुष्टि नी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज टोंक माए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रा AEN और कंप्यूटर ऑपरेटर ने 20,000 रुपये री घूस लेता थका पकड़ लीना। ACB रा एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा बतायो के पकड़ी जिया लोगा माथे शिकायत करण वाला रा घर रो बिजली रो मीटर पाछो देवण और विजिलेंस जांच रपट नी भरण री एवज माए आ रकम मांगण रो आरोप है। ACB कोटा विकास प्राधिकरण माए संविदा रा आधार लाग्योड़ा एक कर्मचारी ने 15,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वा माथे शिकायत करण वाला रा बाप दादा रा घर माए भागीदार लोगा ने लिस्ट माए नाम मांडण सारू घूस मांगण रो आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी भेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। आखिर में खास समाचार एक बार फिर।

0: सुन ले रहो। आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं कीनो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश में पौधारोपण वितरण जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। प्रदेश में चौमासाओं पहली रिहल चल शुरू हुई, कई जिला में आंधी बारिश रो दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर नागौर और किशनगढ़ में छापा मारिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7 बजे हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे देशगान। संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, विषय महिला सशक्तिकरण। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि के 8:45 पर, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:00 आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। रात 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, कल हमारे प्रसारण आरंभ होंगे प्रातः 5:51 से। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। प्रातः 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे बातें फिल्मों की, मधुरता की मिसाल सुमन कल्याणपुर। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। सुबह 9:20 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। तत्पश्चात 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

गीत को गाया था किशोर कुमार ने। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत था एच डी वर्मन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खून पसीना से। गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

0: घुस गए चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं

0: टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे। जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

0: करेंगे झगड़ा प्यारे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
1: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
0: नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम साथ साथ हैं से। गीत को गाया है हरिहरन प्रतिमा संतोष तिवारी ने। बोल लिखे हैं रविंद्र रावल ने, संगीत राम लक्ष्मण का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित

0: नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश

0: देश एक कांगो और एक इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए

0: बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। फिल्म अनाड़ी का दो गाने सुनिए। स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में डाला है खेमचंद प्रकाश ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

इसके बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार

और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड, आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है, उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

ये राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नख़मे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज़ हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद

टप टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर

0: विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत में तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का।